कीते हुए सारे निष्फल चले जांदे। जिवें कि 18 तीर्थां दा इशनान, परोपकारी, जीवन बतीत करना, बहुत सारा दान पुन करना, बहुत प्रसाद करावे, पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसी महापुरख दी, ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच फसे

हर हर गाई। खुलिया कर्म कृपा भई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई। हर दिन रैन कीर्तन गाइए, गरीब नवाज पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज।

कीर्तन हर हर गाई, कीर्तन ने ऐसा रंग चाड़े कर्म खुल गया, कर्म जाग पे। किसे बंदे नू मालिक दी महान बख्शिश होवे ते असी कह देने भाई ये भागशाली है, ये कर्मा वाला है। गुरु महाराज पातशाह कहंदे ने कर्म जागे, कर्म खुलिया, पर खुलिया किवें? मालिक दा कीर्तन गाउण।

ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़ियो, जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़ियो। सहज आनंद रखियो गृह पीतर उठ।

तह रावण घर खबर ना पाई, क्या जाना क्यों मरेंगे, कैसा मरना होए, मत कोई जानो अवर कछ, सब

एक जंगल समान है जिस दे दूर दूर ता बड़ी भयानक अग लगी हुई है। जो अग्नि वड़े वड़े रुखां नूं पले हुए रुखां नूं सारदी तुरी जांदी है। ते जे पिछे वेखिए ता कोमल बूटे होर हरे होंदे आउंदे हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु दी रचना सब में जोत जोत है सोए एक पासे संसार नूं समाप्त कर रहा है एक पासे संसार नूं जन्म दे रहे है। उस दी जोत सदा परिपूर्ण है जिस तरह अनेकां घड़िया दे विच जल हुंदा है ते सब घड़िया विचों आकाश मंडल नजर आ रहा है। घड़े जल दे परे हुंदे हन ते उस जल विचों आकाश मंडल नजर आ रहा हुंदा है। ते जे कोई घड़ा टुट जावे ता आकाश नहीं मरदा केवल ए शरीर दा ठीकरा ही टुटदा है। इसे तरह ही संसार ते जो जीव आउंदा है साहिब कहंदे हन कौन कहंदा कि फलाना मर गया है नहीं कौन मुआ रे कौन मुआ ओ ता पवने में पवन समाया पंज तत्तां दा इंसान बनाया ओ पंजे तत्त जदों वक हो जांदे हन इंसान दी मृत्यु हो जांदी है। साहिब कहंदे हन पवने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया माटी माटी होई एक रोमन हारे की कमन टेक कौन मुआ रे कौन मुआ। ए अकाल पुरख वाहिगुरु दी रचना है ए जग ए सारा संसार उस ईश्वर दी कोठड़ी है रचना है। साहिब बाणी विच इस प्रकार दस रहे हैं।

सब जग उपजा कौन भले को मंदे लोगा परम ना पूलो भाई खालक खलक खलक में खा।

साहिब सिफत सवालियो जिनकी तीसो पार पया कहो नानक करते किया बाता ओ जो किछ

महाराज ने पूछिया क्यों भाई रात पहरे से हाजिर रहे सो? बोल पिया कहन लगा महाराज मैं गैर हाजिर हो गया सा। किथे गया सा? कहंदा जी रास वेखण चला गया सा। अनाल दे पिंड रास धारिए बड़े गुणी आए सन, बड़ा चिर हो गया सी जद तो तुहाडे चरणा विच आया, इस पासे कदे गए नहीं सन। चला गया सा, गलती हो गई। साहब कहन लगे चंगा कीता, जे गया है चंगा कीता। तू दस की वेखिया ते की सुनिया? कहन लगा महाराज चंगा कोई नहीं कीता, मैं बहुत माड़ा कीता। एक तां गैर हाजरी कीती, सेवा तो गैर हाजरी की। एक मैं गलत पासे गया, चंगा तो मैं कोई नहीं कीता। महाराज कहन लगे चंगा फिर दस वेखिया की ते सुनिया की? सिर नीवा करके खलोरिया, खिमा मंगी। महाराज ने फिर पूछिया वेखिया की ते सुनिया की? कहंदा महाराज ना कुछ वेखिया ते ना सुनिया। क्यों भाई ऐसा किवें हो गया? कहन लगा महाराज गया तां बड़ा धाके सा ते भीड़ नूं चीरदा सिरे ते जा पहुंचिया, पर उथे कुछ कहानी होर तरह हो गई। लोग रास धारियां नूं छड्ड के मेरे वल वेखण लग पए और कुछ लोग गल्लां भी करन लग पए, गुरु का सिख इत्थे किधर फिरदा? वेस तो गुरु का सिख जापदा, इहदी दोहरी दस्तार, इहदी श्री साहब, इहदे रहणी बहणी दे सारे लक्षण पूर्ण गुरसिखां वाले ने। इत्थे की करना है? ते जे इत्थे आया रात इत्थे जागदा रहा, अमृत वेले किवें जागेगा? जे अमृत वेले ना जागिया तो नितनेम किवें करेगा? नितनेम ना करेगा तो फिर सिख किवें होया? फिर तो कोई बरूपिया ही होना। जिवें असी रास धारीए तरह तरह के रूप धारण करके ते लोकां दा जी परचावा पै करने आ, किते इह वी तां नहीं सिख दा रूप धारण करके अपना या लोकां दा जी परचावा करदा फिरदा? कहिंदा महाराज उन्हां ने गल्लां कीतियां ते मेरे कोल खलोना औखा हो गया। मैं पिछा नूं निकलना चाहिया पर निकलण नहीं दिता उन्होंने। मैं उत्थे ही सिर गोडियां च दे के बैठ गया। महाराज ना मैं कुछ सुनिया ते ना कुछ वेखिया, तुहाडे चरणां दा ध्यान करके पछताउंदा रहा। साहब कहन लगे तू फिर कहदा गैर हाजिर हो? तेरा मन तां इत्थे रहा ना। दूजे नूं कहन लगे तू तां हाजिर रहा कि महाराज मैं तां किधरे कदम नहीं हिलिया। साहब कहन लगे कदम तां तेरे शरीर दे नहीं हिले, मन करके भी हाजिर रहा, गड़बड़ा गया। कहन लगा महाराज मन तां मेरा इहदे मगर तुर गया सी, मन तां मेरा रास धारियां वाले टिकाणे ते पहुंच गया सी। उन्हां दीआं आवाज़ां मेरे कन्नां च आउंदीआं रहीआं ते मैं रचना रच के इस तरह नचदे होणगे, इस तरह फेरे लैंदे रहे होणगे। मैं ओह तमाशा अखां दे सामने बना के वेखदा रहा। साहब कहन लगे इह बंदा हाजिर सी शरीर करके, लेकिन मन करके गैर हाजिर सी। बड़ा पछतावा लगा, इहदे नाल तां जाण वाला ही चंगा रहा। महाराज कहन लगे नहीं, तुसां दोवां चंगा नहीं कीता। जिहड़ा मेरे सरूप नूं गलत जगह ते लै गया है, इहने वी मेरे नाल धरोह कमाया। मन करके हाजिर रहा है लेकिन शरीर मेरा स्वरूप तां उत्थे लै गया है, ते जिहड़ा शरीर करके इत्थे रहा है, मन करके उत्थे फिरदा रहा है। मैनू इह अधूरे प्रेमी दोवें ही प्रवान ने। मैनू इह अधूरी प्रीत, अधूरी सेवा, अधूरी हाजरी दोवां दी प्रवान नहीं। एक शरीर करके गैर हाजिर फिरदा, एक मन करके गैर हाजिर फिरदा। मैनू तां दोवां तरह नाल हाजिर चाहिए। और कई ऐसा करदे ने, इथों तक मैनू खिमा करना। एक बार ऐसा भी होया किसी प्रेमी नूं क्या गुरमुखा इस

भगत नु गुरु प्यार वाले नु बिना गुरु के दर्शन ते गुरु के दर्शन दे भी दो अर्थ ने, एक ता दीदार जिहड़ी अखां नाल करने आ आपां, एक दर्शन संस्कृत फलसफे नु कहिंदे ने। जो गुरु की फलसफी है जे उहनूं नहीं समझिया ते दर्शन सदा अधूरे रह जाणे। सतगुरु नु सब को देखदा जेता जगत संसार, दिखे मुक्त ना होवे चिचर गुर शब्द ना करे प्यार, गुर शब्द ना करे विचार। जिन्ना चिर गुरु के शब्द दी विचार, गुरु के वचना दा अध्ययन, गुरु के वचना दी कमाई ना कीती, उन्ना चिर केवल आए मथा टेक के तुर गए ता प्यार बढ़ा दूंगा। इस तरह वेखिया गल नहीं बननी, अखां नाल गुरु के सोहने दर्शन दिदारे ते मन नाल गुरु के दर्शन, भाव गुरु के फलसफी दी विचार, गुरमत दी विचार चले। मन तन करके इथे महाराज कहंदे ने नहीं रह सकदा गुरु का सिख, गुरु के दोहां दर्शना बिना, फलसफी बिना ते देखे बिना गुरु नूं कोई नहीं इहदा गुजारा हुंदा। दासां ने पहावे बिन दर्शावे इक खिण धीरज क्यों करे, नाम बिहूणा तन मन हीना, जल बिन मछली ज्यों मरे। बंदा तड़फदा फिरदा रह जांदा, गुरु तो टुटिया, ईश्वर तो टुटिया होया, नाम तो टुटिया होया बंदा, मन करके तन करके बेचैनी विच रहिंदा। जिवे मच्छी पानी चो बाहर कढ के सुट दईए, ओनू कहिए तक केवल शरीर करके तड़फ रही है, मन तो एदा सुखी है, कोई नहीं मन सुखी रहिंदा। ओ जिहड़ी शरीर करके तड़फ रही है अंदरों भी दुखी, ते जिहड़ा बंदा अंदरों दुखी है ओ शरीर करके भी तकरीबन दुखी हुंदा है। आ तुसां देखिया बंदे नूं गुस्सा आ जावे, कहिंदा मेरा तां तन मन पिया सड़दा, कहिंदा और उंज भी चेहरा भी लाल सूहा हो जाएगा, हथ पैर कंबन लग पैणगे। हुण गुस्सा तां मन नूं आया, तेरे शरीर नूं की हो गया। और एक दिन ऐसा भी आवेगा डॉक्टर कहणगे गुस्सा ना करिया कर, तेरा खाना तेनू कोई नहीं भ्यासम हुंदा, तेरा मेदा काम नहीं कहिंदा, क्यों मेदा तां शरीर है, मेदा तां शरीर दा केंद्र है, गुस्से दा दिमाग च गुस्से दा मेदे नाल की तलक है, बहुत वड्डा तलक। क्रोध करने वाला, चिंता करने वाला अज नहीं ते कल नूं बहुत वड्डा बीमार हो जाएगा। शरीर ते मन दा बड़ा संबंध है, प्यार मन ते तन दोहां तरीकियां दे नाल पुगदा है, एक तरीके नाल कोई नहीं पुगदा। महाराज कहिंदे ने जिहड़े टुट गए ने प्यार तो उन्हां दा मन ते तन दोवें कमजोर बेचैन दुखी रहिंदे ने। नाम बिहूना तन मन हीना, जल बिन मछली ज्यों मरे। ते कहिंदे ने मैनू इहो जी मौत, इहो जिहा तड़फणा, इहो जी

गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती थी, नीचे होते चले गए।

जमरौत दी जंग विच सिखा ने पठाना नू ऐसी मार मारी कि पठान कन्ना नू हथ ला तौबा तौबा कर उठे। काबल दियां गलियां बाजारां विच नलवे दियां गल्लां होण लगियां। नलवे तो डरदे पठान सूरज डुबदे सार घरां नू जंदरे ला अंदरी लुक जांदे। चार चुफेरे मरियां वर्गी चुप छा जांदी। अपने रोंदे न्यारियां नू चुप कराउण लई पठानियां इउं डराउंदियां।

0: सिख राज दिया हद्दा, दिनो दिन काबल वालू वद्दिया देख, पठार सोची डूब गए।
1: अमीर काबल दोस्त मोहम्मद खां घबरा गया।
0: सरदार हरी सिंह नलुए दी चढ़त, पठाड़ा नू अपनी मौत दिसण लगी।
1: कई हजार मुल्किया कठा कर शमी खान ने अपने दादे परदादे दी बहादरी दे वास्ते पौंदिया इंज आखिया,

0: 28 अप्रैल 1837 का सूरज चढ़दिया ही 1000 सिंघा ने पठाना नू जा ललकारिया। सत श्री अकाल दे जयकारिया नाल आसमान गूंज उठिया, तलवारा पिड़िया,
1: धरती लहू लुहान हो गई,
0: लोथा ते लोथा चढ़ गईया। गुरु दे सिंघा ने ऐसे हद दिखाए कि गाजिया दे दंद जुड़ गए। दूजे दिन तोपा दे गोले दागे, रात पैंदिया ही जमरौद किले दी सज्जी कंध विच पार पै गया।
1: हुण महा सिंह अगे 3 काम सन, किले दी राखी करना, कंधा पार पूरना ते पिशोर बीमार पए सरदार हरी सिंह नलुए नू सुनेहा पहुंचाना।
0: सिंघा दे रोक दिया बीबी हरशरण कौर जत्थेदार तो चिट्ठी लै पेश बदल, किले विचो निकल तुरी। रातो रात पेंडा मुका, पिशोर च सरदार हरी सिंह नलुए नू जा चिट्ठी पुचाई। पढ़ के सरदार दिया अखा विच खून उतर आया, डौले फरके तलवार दे मुठे ते हथ गया। ऐ सोच के कि मेरी जिंदगी ही सिख राज दी जिंदगी है, ओ उठ बैठा। खालसे दी तलवार आज हिंदुस्तान दा इतिहास बदल सकती है। मैं जान नालों सिखी शान नू प्यारी समझदा हां। ऐ सोच दिया ही चट सिंघा नू इकट्ठे कर सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

नगाड़े ते चोट लगी, खंडे तलवारा ते बर्छे लिशके, केसरी निशान चूले, कोड़िया दे पौड़ा नाल पहाड़ियां गूंज उठिया। दस कु हजार सिंघा ने जमरौद वालू कूच कर दिता। सरदार हरी सिंह नलुए ने इंज ललकारिया।

0: 3 अप्रैल 1837 दा सूरज चढ़दिया ही सरदार हरि सिंह नलुए ने सिख फौजां समेत बोले सो निहाल दा जयकारा गजा शम्मी खां दी फौज दा जा टाकरा कीता। तलवारा बरछिया विच्चों मौत दे चंग्यारे निकले, लोथा नू लिताड़ दे सिंगा दे कोड़े अगे वदन लगे, मनुखी सिर मतीरिया वांग पैरा विच रुलन लगे।
1: धरती लाल सूही हो गई। सरदार हरी सिंह नलुआ ते शम्मी खान मैदाने जंग विच एक दूजे नू एउं टकरे

0: सरदार हरी सिंह ने फट नू कुट के बन लिया, कोड़े नू जमरौद किले वालू मोड़ दिता। किले विच पहुंचदिया ही जत्थेदार महा सिंह ने नलुए सरदार नू कोड़े तो ला पलंग उत्ते लिटा दिता। तकलीफ वध दी गई,
1: अद्धी रातों शरीर निढाल हो गया, जान साथ छड़न लगी, पर सरदार दे मुख ते लाली उसे तरह डलक रही सी, अजे भी सज्जा हाथ तलवार दी मुठ होते ही सी।
0: मैदानों परत के आए सिंगा तो लड़ाई दा हाल पुछया, जित दी खबर सुन गज के जयकारा बुलाया।
1: ते फेर सारे सिंगा वाल तक सरदार हरी सिंह नलुए ने हौसला दिंदे आखिया,
2: खालसा जी, मैनू अकाल पुरख दा सद्दा आ गया है। मैं पंथ वास्ते जमया सी, ते पंथ वास्ते शहीद हो रिया, मेरे पिछों घबराउना नहीं, तुसी खालसा राज दे राखे हो, खालसा जी जित्ता जारी रखनिया, पठान मुड़ के हिंदुस्तान वाल मुंह ना कर सकन।
1: एह कहंदिया ही सरदार हरी सिंह नलुए ने अंतम सुनेहा इंज दित्ता।

सच्चा अमर गोविंद दा अमर मैंने हुकुम सुन गुरु प्यारे सत्संगत मिलाप कर हर गुरु गोविंद त्याए कदों हर गुरु गोविंद त्याए सज अमृत वेला वाह वाह।

कबीर मानस जंदर लब है होतना बारंबार जो बंथल पाके पोंगिरे बोरना लागे जा।

तब एक मानस दे ही पाए, मानस जन्म अमूल पायो, वृथा काहे गवाओ, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एक मानस दे ही पाए। इस दे को सिमरे देव पजो गोविंद भूल मत जाओ, पजो गोविंद भूल मत जाओ, मानसम का ही लाओ।

जब लग बिकल पाई नहीं बाणी पज लै रे मन सार पानी अब ना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना पजया जाए ए तेरे अवसर ए तेरी बार ए

या भीतर जो राम बस है साचो ताए पछानो पई प्राप्त मान देवरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया।

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरार्थ धाम। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरार्थ धाम। फिरत बोते जुगहारे हो, फिरत बोते।

गुरुमुख पाया। मतन होए चलंब जे सतगुर पाया, चले जन सवार वखर सच लै पत पाए दरबार सतगुरु शब्द पै पत पाए दरबार सतगुरु शब्द पै चले जन सवार चलिया पक्ष जन सवार वाजा वाए सी चलिया पक्ष जन सवार वाजा वाए सी नानक।

कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गाजर मीन कुरंगा, कई जन्म पंखे सर्प होयो,

संपत्ति दोयो स्वा राम राम अंतरो भार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिसमें बसे ते साज परिख्या मंतन नाम जपो ले लाए दुख दर्द मनते पो जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगे निभे खेप तुम्हारी एकाटेक रखो मन माहे नानक बोल आवे जा।

तू मेरे काम लग जा मैं तेरे काम लग जाना मैनू तू अपना काम दे दे ते मेरा काम तू ले संसार च ऐसा चल जाना एक दूसरे दे काम आना जिस काम दी जिदी जिन्नी समर्था होवे बड़े पुराने समयां तो बंदा काम दा लैण देण करदा रहे जेड़ा काम मैं नहीं कर सकदा जेड़ा कर सकदा ओनू जाके बेनती करा तू ए कर दे एदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना ओ मैनू दस एक दूजे दे काम आ सकी संसार च भी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मुंह भी वेखना पिया होगा। महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउन दी एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउनी है तू वाधू नाल

तेरी समर्था महान है, करता पुरख जू है, सब कुछ कर सकना, ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैथों कुछ भी नहीं हो सकता। जब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा, अरदास तो हो सकती है। और सच्ची गल जानना, अरदास च खड़े हो जाना ही रब दा काम है। ओदे काम लगन दा मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए, ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे विच। और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण, मस्तक न्यो जाए, इहदे दो अर्थ हुंदे ने। हाथ जुड़ जाने का मतलब है साहेब जी मैथों कुछ नहीं होना, इन्ह हाथों ने कुछ नहीं कर सकना, इन्ह हाथों तो होना कुछ नहीं, ये हाथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने, इन हाथों च ताकत नहीं कुछ कर सकन। आप करता पुरख हो, इन्ह हाथों तो कुछ नहीं होना, ये हाथ बज गए, ये हाथ तेरे सामने जुड़ गए, इन्हों तो कुछ नहीं होना। एक तो दोवे हथ बन के सत्कार हुंदा है ना, किसी दूसरे का अभिवादन करना हो, आदर करना हो, भी हथ बनने। लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना, बल्कि जिसले मत्था टेक देने आ, इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने। एक तां इह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैण आया, लेकिन समर्था दे संबंध विच भी मत्था टेकने आ सी, मत्था टेकने आ पातशाह, इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं, इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जाना, मैं तां सोच भी ठीक तरह नहीं सकदा, मेरे सोचने च बड़ियां भुल्लां ने, मेरी थां सोचो भी तुसीं, मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी, ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो। मैं तुहाडी अरदास जुड़िया हुआ, अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हुआ, मैं केवल अरदास जुड़िया हुआ। एक ते जुड़ जाए ना बंदा, साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराया, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। ये वखरी गल है, मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, जुड़ना ही औखा है, अरदास जुड़ जाना ही औखा है, नहीं जुड़े जाता तो ये वास्ते भी अरदास करिए, बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए, तू मैनू अपनी अरदास जोड़ दे, अपनी भगती नाल मेरे लिए भी एकाग्र करने की समर्था मैनू बख्श, फिर मैं अरदास लगा होवांगा, हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा, भगती च लगा होवांगा, प्रभु का होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं गया, वाहिगुरु का कोई काम साडे गोचरा नहीं, प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल, सतगुरु केवल साडे कोल प्यार चाहुंदा है। ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए, अरदास करनी आ जावे ना, फिर की हुंदा है, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। एक तां हुंदा ना काम हो जाना, काम कर लेना, काम नबेड़ लेना, ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना, पहला तां करन तों पहला ही थड़कदा हुंदा, घबराया हुंदा, डगमगाउंदा है, ते जे किते काम हो जाए हम के बह जांदा है, पसीने पूंजदा है, सजना मित्रा नूं कहिंदा है, शुकर करना काम निबड़ गया, बंदा केवल निबेड़ सकदा है। लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते निबेड़दा नहीं, सतगुरु कार्ज सवारदा है। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, उस कार्ज विच शोभा हुंदी, मान हुंदा है, सत्कार हुंदा, उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी। कार्ज आया रासे, नानक कहो गुर पूरा भेटियो, सगले दुख बिनासे। जदों सतगुरु कार्ज करना आ जावे, उसले कार्जां च सोभा हुंदी, ते अरदास करन वाले दा मुख उजला हुंदा है। एह गल वखरी है कि अरदास करन वाला बंदा कार्ज दी संपूर्णता तो बाद ए नहीं कहिंदा मैं कम नबेड़ दिया, बल्कि ओह त

कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुलहा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। साहब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना ता एदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

किन्हीं निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वेसा, किन्हीं ग्रह

पंडित सासत सिमृत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भजमन मेरे तर भव जल तू तारी सन्यासी विभूत लाए दे सवारी पर त्रय त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरत तन पावे सूद वैस पर कृत कमावे मैं मूरख हर नाम छड़ावे सब तेरी सृष्ट तू आप रया समाई।